और अब अगली आवाज उषा अमोनकर की। रचना योगेश प्रवीण की है।

अभी आप दीपाली और स्वप्निल की आवाज़ों में ये भजन सुन रहे थे, और अब आखिर में लीजिए सुनिए संध्या मुखर्जी को।

0: संध्या मुखर्जी के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, कल के हमारे अंक में हमने चर्चा की थी जमाल घोटे के पौधे के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में। आपने देखा कि ये पौधा वैसे तो बहुत आम है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं और इसकी खेती से हम लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, ज़रूरत कुछ अनुसंधानों की है और किसानों में जागरूकता पैदा करने की है। आइए आज हम कुछ बातें करें जमाल घोटे के पौधे के फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। जहाँ तक जलवायु एवं भूमि का सवाल है, जमाल घोटे का पौधा शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती बिना किसी विशेष प्रयत्न के की जा सकती है। ये सभी प्रकार की सामान्य एवं पथरीली, कंकरीली और बंजर भूमि में भी उग सकती है। जल निकास सुविधा युक्त खेत को ही इसके लिए चुनना चाहिए, यानी जहाँ पर पानी ठहरता हो वहाँ पर इसकी खेती नहीं हो सकती। जहाँ तक पौधे के प्रवर्धन का सवाल है, जमाल घोटे के प्रवर्धन के लिए आप बीज, कलम व बीज से तैयार पौध का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत की आवश्यकता के अनुसार जुताई करके सिंचित फसल के लिए 2x2 मीटर व असिंचित फसल के लिए 2x1 मीटर की दूरी पर बीज या नर्सरी में तैयार पौध को गड्ढा कर आप बुआई कर सकते हैं। ध्यान रहे, जहाँ पर आप बीज बोते हैं वहाँ पानी न भरें, क्योंकि इससे बीज सड़ने की संभावना होती है। प्रत्येक स्थान पर 2 से 3 बीजों को बोएं तथा 1 माह बाद इन अंकुरित पौधों में एक सबसे अधिक स्वस्थ पौधे को रखकर बाकी पौधे को निकाल दें। बीज से बुआई करने पर सिंचित अवस्था में 3 से 4 किलोग्राम व असिंचित यानी बिना सिंचाई वाली अवस्था में 6 से 8

0: किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। भूमि की प्रवृत्ति के अनुसार एक या दो जुताई कर देते हैं। भारी मिट्टी में गहरी व हल्की मिट्टी में उथली जुताई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार दूरी पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा व इतना ही गहरा व लंबा गड्ढा बना लें। इसके बाद इस गड्ढे में मिट्टी व 2 से 3 किलोग्राम गोबर की खाद व उर्वरक, जिसमें 20 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 16 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश होना चाहिए, इसके मिश्रण को भर दें। बाद में डिबलर की सहायता से 2 बीज इन गड्ढों में बो दें। जहाँ तक वानस्पतिक प्रवर्धन का सवाल है, इसके लिए 1.5 से 2 फुट लंबी टहनियों को काटकर आप खेत की मेड़ पर बाड़ के लिए लगा सकते हैं। टहनियाँ लगाने के बाद पानी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कलम लगाने के 2 माह बाद तक अधिक तापमान पर इनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। वानस्पतिक संवर्धन से तैयार पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन पैदावार इसकी कम होती है। किसान भाइयों, बीजों से तैयार पौधों को आप मुख्य खेत में जो बोते हैं, इसके लिए पहले पॉलीथीन की थैलियों में इनको स्थानांतरित करना होता है। इन थैलियों में 1:1:1 के अनुपात में रेत, खाद व मिट्टी भर दें और प्रत्येक थैली में 2-2 बीज रखें। ज़रूरत के अनुसार थैलियों में हल्का पानी देते रहें। बाद में पौधों की ऊँचाई जब 1.5 फुट के करीब हो जाए, तब इन पौधों को तैयार गड्ढों में लगा दें। जहाँ तक पौधे बाड़ के लिए लगाने हैं, वहाँ पर गड्ढों की दूरी 0.5 से 1.25 मीटर रखें। सिंचित व पर्याप्त नमी की अवस्था में प्रत्येक हेक्टेयर में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 24 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी व फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा बुआई के 2 महीने बाद दें। किसान भाइयों, जमाल घोटे से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हर साल इनमें कटाई छटाई करते रहनी चाहिए। पहले वर्ष में 2 फुट की ऊंचाई से, दूसरे वर्ष में 3 फुट की ऊंचाई से, तीसरे वर्ष में 4 फुट की ऊंचाई से व उसके बाद 4 से 5 फुट की ऊंचाई से पौधों की टहनियों को काटते रहना चाहिए, जिससे पौधों पर अधिक शाखाएं निकल सकें व हर शाखा फल दे सके, ताकि प्रत्येक पौधे से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये प्रक्रिया 5 वर्षों तक चलती रहती है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार ही इस प्रक्रिया को दोहराएं। जमाल घोटे में वर्ष में 2 बार सितंबर एवं मार्च से अप्रैल में पुष्पन क्रिया होती है। फूल आने के 2 माह से 4 माह के बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। दूसरे वर्ष के बाद पौधों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। जब फल काला पड़ जाए तो इसे तोड़ लेना चाहिए। साधारणतः दिसंबर व जनवरी के माह में पके फलों को तोड़ लेना चाहिए। परिपक्व फल के ऊपर से छिलका उतारकर बीज निकाल लेते हैं। इसके बाद इन्हें शुष्क स्थान पर एकत्रित कर भंडारित करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर

0: विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar.

0: टपर छूटेगा। जलयान अगले रोज सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा। इन्हीं स्थानों के लिए एमवी भारत सीमा 30 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। वहीं एमवी सेंटिनल आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा पर जाएगा। वापसी कल रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। इसी स्थान के लिए एमवी सेंटिनल 29 तारीख और सिंधु जहाज 31 तारीख को लिटिल अंडमान की यात्रा पर चलेंगे। और अब अंतरद्वीप जाने वाली जलयान एमवी हडबे आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रीट आइलैंड आज श्री विजयपुरम से दिन के 11:30 पर चलेगा। वहां से ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए जाएगा और शहीद द्वीप से जलयान दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। वहीं एमवी बाराटांग आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा तथा आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। वहीं स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब कल के होने वाले यात्रा कार्यक्रम पर एक नजर। कल बृहस्पतिवार 28 मई को एमवी बाराटांग प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर छूटेगा। जलयान कल दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड शहीद द्वीप तथा एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेंगे। वापसी में एमवी स्ट्रीट आइलैंड कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से रवाना होगा जबकि एमवी जॉली बॉय 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल श्री विजयपुरम से दिन के 11 बजे स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और स्वराज द्वीप से कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड कल स्वराज द्वीप की यात्रा पर दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल वहां से शहीद द्वीप के लिए दोपहर बाद 2 बजे प्रस्थान करेगा तथा शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार, इंद्रधनुष कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। श्रोताओं आज की प्रस्तुति का विषय खास है और वो है गुलाब। गुलाब अपनी खूबसूरती, खुशबू और प्रेम के प्रतीक के रूप में दुनिया में मशहूर है और इसीलिए इसे फूलों की रानी का खिताब भी हासिल है। गुलाब की खूबसूरती उसकी पंखुड़ियों से भी ज्यादा कांटों के बीच मुस्कुराने की उसके अदा में होती है। इसीलिए हम सब ये कहते सुनते आए हैं कि गुलाब की तरह बनो जो कांटों के बीच भी अपनी खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता।

जब गुलाब की बातें हों और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें ना हों, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे प्यार से कहते थे चाचा नेहरू। बच्चों के चाचा नेहरू के कुर्ते पर एक गुलाब का फूल हर दम सजा हुआ होता था। वो गुलाब जो प्रेम और शांति का प्रतीक है, जो अपनेपन का एहसास देती है। गुलाब से हम सीख सकते हैं कि कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराना संभव है, नफरत के बीच भी प्रेम बांटा जा सकता है और अशांति के बीच भी मन में शांति का दीप जलाया जा सकता है।

अपनी नरमी की ताकत और शांति में छिपी जीत की याद दिलाती गुलाब की पंखुड़ियाँ हमें अपने अच्छे कर्मों की खुशबू से दुनिया जीतने और महकने की सीख देती है। वो इसलिए क्योंकि हजारों कांटों के बीच खिलता गुलाब लोगों को उसकी खूबसूरती और महक की ओर आकर्षित करती है।

0: आप सबके जीवन में भी गुलाब की तरह खुशबू हमेशा महकती रहे, इसी दुआ के साथ चाहती हूँ कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 291वीं कड़ी। गायक हैं लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण चंदीश और महेंद्र कपूर।

नखा जैसी राक्षसी, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी

के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें। तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण चंदेश्वरी और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने रामचरित मानस गान की 251वीं कड़ी सुनी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, देशगान कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए चंद देशभक्ति रचनाएं।

देशगान के तहत अभी आप चंद देशभक्ति रचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मौसम का हाल व कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वीपों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम वर्षा हुई। हडबे, मायाबंदर तथा कारनिकोबार में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक की मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को कल और 31 तारीख तक के मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलेंगी, इस कारण समुद्र अशांत रहेगा। ऐसे में इन तिथियों में समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। और अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागनी और ठीक उसी वक्त विविध भारती मुंबई पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के

तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य दर्पण के तहत सकीना सिराज की स्वरचित काव्य पाठ। सवेरे 8:30 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। फनकार होंगे पिनाज मसानी, पंकज उदास और अनूप जलोटा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत पंडित राजन मिश्रा व पंडित साजन मिश्रा का गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। दिन के 11:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। चित्रलोक कार्यक्रम सुनेगा दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे तेलुगु कार्यक्रम, इसके तहत फिल्मी की गाने सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे फिल्मी गीत दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे शंकर शंभू, हबीब पेंटर कव्वाल और कैसर आज़ाद बदायूनी। आपके नाम फिल्म पैगाम, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी और सभा समाप्ति उद्घोषणा के बाद FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, और कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का समय रहेगा 3:30। शाम 4:00 होगी हमारी दूसरी सभा की शुरुआत निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे शाम के 4:30 पर। 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम शाम के 5:00। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के तहत आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम के तहत शाम के 6:00 डॉक्टर NC चौधरी के साथ की गई बातचीत का विषय रहेगा तालाब पर आधारित बतख पालन। दर्द भरी नगमे कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 6:30। शाम 7:20 पर होगा फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम के तहत सुनिए गीतों भरी कहानी शाम के 7:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे की 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मन्त्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैण्ड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धि भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% रही, जबकि न्यूनतम तापमान 25.30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल का अधिकतम तापमान रहा 29.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39।

और अब आपको बता दें एयर इंडिया की आज की उड़ानों के बारे में। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 श्रीविजयपुरम पहुंचेगा दिन के 11 बजे तथा विमान 2936 श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया की आज की उड़ान।

श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागनी, और ठीक उसी वक्त विविध भारती मुंबई पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सुनिएगा साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत सकीना सिराज की स्वरचित काव्य पाठ। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज फनकार होंगे पिनाज मसानी, पंकज उधास और अनुप जलोटा। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत पंडित राजन मिश्रा व पंडित साजन मिश्रा का गायन प्रसारित किया जाएगा।

0: आज रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और रात 10 बजे सुनिएगा फिल्म गीतों का कार्यक्रम सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर सुनिए चर्चा का विषय है कार्यक्रम। और रात 10 बजे हमारे विविध भारती मुंबई पर आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सफलता पर द्वीपों के उपराज्यपाल ने पर्यटन निदेशक को प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर वीडियो का पूर्ण संस्करण भी जारी किया गया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग जून माह में टीकाकरण अभियान के 33वें दौर की शुरुआत करेगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और राजकीय पुस्तकालय में समर बुक फेस्ट 30 मई तक चलेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से स्वराज द्वीप में पानी के भीतर फहराया गया सबसे बड़ा झंडा और उसके अगले दिन पानी के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्टैग बनाने के दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सफलता पर द्वीपों के उपराज्यपाल ने सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक विनायक चमड़िया को तत्काल प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की थी। ये सम्मान उन्हें इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कार्यक्रमों के सफल संचालन के साथ साथ इनके निर्बाध नियोजन और त्रुटिहीन कार्यान्वयन के प्रति उनके सूक्ष्म व समर्पित प्रयासों की मान्यता में दिया गया। कल लोक निवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, अंडमान निकोबार पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पर्यटन निदेशक को प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने इन दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से संबंधित आधिकारिक वीडियो का पूर्ण संस्करण भी जारी किया। इन दोनों वीडियो के लिंक अलग से जारी किए जाएंगे। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग

ओर से जून के पहले सप्ताह से खुरपका मुंहपका रोग के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान के 33वें दौर की शुरुआत की जाएगी। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ये अभियान जून माह में दक्षिण अंडमान के विभिन्न गांवों में चलाया जाएगा। इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में 11 विशेष टीकाकरण टीमों का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी ने कल राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के सामने हेरिटेज योग सत्र का आयोजन किया। ये कार्यक्रम लोगों को द्वीप समूह की समृद्ध विरासत से जोड़ने के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में योग के महत्व को रेखांकित करता है। इस योग सत्र में कुल 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नंदिनी के पर्यवेक्षण और योग प्रशिक्षकों के सहयोग से आयोजित किया गया। कृषि विभाग ने यूटी आत्मा के सहयोग से सब्जी और बागवानी फसलों में मिली बग के प्रकोप के प्रबंधन और नियंत्रण पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए द्वीप समूह के विभिन्न ब्लॉकों में संवेदीकरण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में दशरथपुर पंचायत में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को मिली बग के प्रकोप के प्रभावी प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जैविक बायो इनपुट्स तैयार करने और उनके उपयोग का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर और समर बुक फेस्ट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाज कल्याण विभाग द्वीप समूह के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एडिप और RVY योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों के वितरण हेतु दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करेगा। समग्र क्षेत्रीय केंद्र PMDK के आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के समन्वय से आयोजित इन शिविरों का आयोजन पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण और संबंधित सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके मूल्यांकन और पहचान की सुविधा हेतु किया जा रहा है। शिविर 22 जून से सुबह 9 बजे से द्वीपों के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। मूल्यांकन शिविर में आने वाले लाभार्थियों से अपना UDID कार्ड, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लाने को कहा गया है। RVY योजना के तहत आने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से अपना आधार कार्ड और 15,000 रुपये से कम मासिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज साथ लाने का अनुरोध किया गया है। अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी या संबंधित CDPO कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। राजकीय पुस्तकालय में समर बुक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। फेस्ट का ये पहला चरण 30 मई तक चलेगा। इस उत्सव का उद्घाटन कल नोडल अधिकारी अर्चना सिंह द्वारा विभिन्न आकर्षक प्रतियोगिताओं और साहित्यिक गतिविधियों के साथ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, किताबों और साहित्य के प्रति प्रेम जगाना है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी ने छात्रों को फेस्ट के दौरान आयोजित होने वाली बौद्धिक रूप से प्रेरित करने वाली और रचनात्मक रूप से समृद्ध करने वाली विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लिटिल अंडमान में जनसंपर्क यात्रा के दौरान हटबे बाजार में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष रंगलाल हल्दर, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष PST उमर, जिला परिषद सदस्य ए उमर, असंगठित श्रमिक एवं कर्मचारी, कांग्रेस के अध्यक्ष एस तेजेश्वर राव, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिभूषण घोष और क्षेत्र के अन्य स्थानीय नेता उपस्थित थे। इस बैठक में लिटिल अंडमान के कल्याण और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई।

सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार लाने, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवाओं को बेहतर बनाने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षण संस्थान गैराचरमा में 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 जून से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून की मध्य रात्रि तक रहेगी। आवेदन पत्रों की जांच 22 से 28 जून तक चलेगी। अस्थायी योग्यता सूची 29 जून को CCAB पोर्टल और डाइट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वृक्षाबाद स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में थेरेपी, सीखने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी और कौशल उन्मुख ग्रीष्मकालीन शिविर गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इस दौरान CRC ने गैर सरकारी संगठन पंख के सहयोग से हेडो में दिव्यांग बच्चों के लिए एक हाइड्रोथेरेपी सत्र का आयोजन किया। साथ ही ब्रेल, एबेकस, ट्रेलर फ्रेम और ओरिएंटेशन व मोबिलिटी पर एक 10 दिवसीय प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सफलता पर द्वीपों के उपराज्यपाल ने पर्यटन निदेशक को प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर वीडियो का पूर्ण संस्करण भी जारी किया गया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग जून माह में टीकाकरण अभियान के 33वें दौर की शुरुआत करेगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जाएगा और राजकीय पुस्तकालय में समर बुक फेस्ट 30 मई तक चलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, जब तिरंगा लहराता है तब दिल में देश प्रेम की नई धुन बज उठती है। हमारा देश मिट्टी का एक सिर्फ टुकड़ा नहीं, बल्कि इसके जर्रे जर्रे में वीर शहीदों की शहादत, त्याग और बलिदानों की अमर कहानी बसी है।

शहीदों की कुर्बानी को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। उनके बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।

देशभक्ति की भावना हमें जोड़ती है भाषा के ऊपर, धर्म से ऊपर और हर भेदभाव से ऊपर। जब राष्ट्र की बात आती है तो हर दिल एक ही धड़कन बन जाता है, वो है हमारा हिंदुस्तान।

अभी आप देश रागिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: सुबह की नई सुनहरी किरणों और ताजगी भरी हवाओं के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। श्रोताओं, हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई मुस्कान लेकर आती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तो श्रोताओं, चलिए इसी संदेश के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए सकीना सिराज की स्वरचित काव्य पाठ।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैंने खास करके इन दोनों नज्मों को शामिल किया है। गांव की बरसात, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, एहसास में डूबे हुए लम्हात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, एहसास में डूबे हुए लम्हात मुझे, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, नाली में छप छपा कर पानी से खेलना, पहाड़ी की चोटियों से डंगोला फिसलना, डंगोलों को फिर झाड़ी में लाकर छुपाना, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, नाली में छप छपा कर पानी से खेलना, पहाड़ी की चोटियों से डंगोला फिसलना, डंगोलों को फिर झाड़ी में लाकर छुपाना, मेरी बचपन ने दी है हंसी सौगात मुझे, मेरी बचपन ने दी है हंसी सौगात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, जामुन की डालियों को झुकाना

कर, मस्ती में फल फूल को तोड़ना लपक कर, जामुन की डालियों को झुकाना लटक कर, मस्ती में फल फूल को तोड़ना लपक कर, घर आना फिर शाम को सुबह से भटक कर, सोना बिन खाए ही बिस्तर में थक कर, घर आना फिर शाम को सुबह से भटक कर, सोना बिन खाए ही बिस्तर में थक कर, लुभाती थी मेरी माँ की हर बात मुझे, लुभाती थी मेरी माँ की हर बात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, जाकर सुबह से खेत की खाड़ी में तैरना, परिंदों को समुंदर के कंकड़ से मारना, जाकर सुबह से खेत की खाड़ी में तैरना, परिंदों को समुंदर के कंकड़ से मारना, बादाम को चुन चुन कर पत्थर से तोड़ना, चिड़ियों के घोंसलों को घर लाकर सजाना, बादाम को चुन चुन कर पत्थर से तोड़ना, चिड़ियों के घोंसलों को घर लाकर सजाना, मोह लेते थे उस वक्त के हालात मुझे, मोह लेते थे उस वक्त के हालात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना, क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना, हल जोते मेरे अब्बा तो मुट्ठी को पकड़ना, क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना, हल जोते मेरे अब्बा तो मुट्ठी को पकड़ना, पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना, पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना, अब्बा के साथ साथ चारे को गाड़ना, पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना, अब्बा के साथ साथ चारे को गाड़ना, सरहाते थे मेरे अब्बा के आदात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, सरहाते थे मेरे अब्बा के आदात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, गाती थी कबूतर गुटुरगू का नगमा, छेड़ी थी कोयल फिजा में तराना, गाती थी कबूतर गुटुरगू का नगमा, छेड़ी थी कोयल फिजा में तराना, जामुन की डाली से हरियल का उड़ना, पत्तों से छन छन के पानी टपकना, जामुन की डाली से हरियल का उड़ना, पत्तों से छन छन के पानी टपकना, क्या खूब लगती थी ये कायनात मुझे, क्या खूब लगती थी ये कायनात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, गुलो समर से थी भरी क्यारियाँ, खेतों की जीनत थी हरी बालियाँ, गुलो समर से थी भरी क्यारियाँ, खेतों की जीनत थी हरी बालियाँ, लुभाती थी हर दिल को हरियालियाँ, सज धज के दुल्हन बनी वादियाँ, लुभाती थी हर दिल को हरियालियाँ, सज धज के दुल्हन बनी वादियाँ, याद है आज भी वो जवां रात मुझे, याद है आज भी वो जवां रात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद है आज भी वो जवां रात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त, क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त, बदमस्त था उस वक्त का आलम मेरे दोस्त, क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त, बदमस्त था उस वक्त का आलम मेरे दोस्त, ना था किसी से कोई भी बरहम मेरे दोस्त, हर दिल था हर दिल का मरहम मेरे दोस्त, ना था किसी से कोई भी बरहम मेरे दोस्त, हर दिल था हर दिल का मरहम मेरे दोस्त, मिले हैं विरासत में वही इनामात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, मिले हैं विरासत में वही इनामात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। मेरी दूसरी नज्म का उन्वान है तलाश। मैंने रिश्ते के

0: सैलाब में बहकर दिल से दिल तक सफ़र किया है, फकत इसी जस्तजू में कि कहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर। फकत इसी जस्तजू में कि कहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर। मैंने सीने से लगा कर मासूम बच्चों को उनके नफ्सियात और एहसासात को पढ़ा है। मैंने सीने से लगा कर मासूम बच्चों को उनके नफ्सियात और एहसासात को पढ़ा है माओं के आंचल के छाँव में ममता का साया ढूंढा है। माओं के आंचल के छाँव में ममता का साया ढूंढा है। चक्कर काटे हैं हमने दोस्तों के इर्द गिर्द बुए वफा के लिए। चक्कर काटे हैं हमने दोस्तों के इर्द गिर्द बुए वफा के लिए सिमट कर महबूब के बाहों में उनकी गर्मीय लम्स में खोजा है खुद को। सिमट कर महबूब के बाहों में उनकी गर्मीय लम्स में खोजा है खुद को। मैंने महसूस किया है दर्द मजबूर बेकसों का। मैंने महसूस किया है दर्द मजबूर बेकसों का। झांका है हमने हर एक दिल में हर आंगन में। झांका है हमने हर एक दिल में हर आंगन में नहीं पाया मगर कहीं भी। झांका है हमने हर एक दिल में हर आंगन में नहीं पाया मगर कहीं भी सुरागे मोहब्बत। नहीं पाया मगर कहीं भी सुरागे मोहब्बत। फिर भी तलाशे मोहब्बत में मैं हो सफ़र हूँ अब भी। फिर भी तलाशे मोहब्बत में मैं हो सफ़र हूँ अब भी। जाने कहाँ है वो मंजिल। जाने कहाँ है वो मंजिल कि जहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर। जाने कहाँ है वो मंजिल कि जहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर।
1: साहित्य दर्पण के तहत अभी आप सकीना सिराज की ये पूर्व प्रसारित स्वरचित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवा रहे हैं पहला गीत। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुबह की ठंडी हवा की तरह मन को सुकून दे जाते हैं। श्रोताओं, जिंदगी में खुश रहना भी एक कला है, मगर मन में सकारात्मकता हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी खुशियां दे जाती है। तो लीजिए सुनिए सिंग इज किंग फिल्म का गाना राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। मयूरपुरी का गीत है, प्रीतम का संगीत।

0: राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सिंह हिज किंग फिल्म का ये गीत सुना और अब कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और अब पेश है एक खूबसूरत सा गीत शिल्पा राव और केके की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्ता की रचना, विशाल शेखर का संगीत है।

उतना ही मिठास लौट कर आएगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों पर विश्वास करना भी जरूरी है। किसी ने बहुत खूब कहा है, जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, मंजिल उन्हीं के कदम चूमती है। तो अब आगे बढ़ते हैं गीतों की ओर। किस्मत कनेक्शन फिल्म का ये गीत है, गायक मोहित चौहान और श्रेया घोषाल।

श्रोताओं, हर सुबह हमें ये याद दिलाता है कि चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज फिर से शुरुआत की जा सकती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और अब समय है कार्यक्रम के आखिरी गीत का। फिल्म गॉड तो से ग्रेट हो, आवाजें नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल की।

और अब श्रोताओं, गीतों और खूबसूरत विचारों के साथ गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का ये सफर आज बस यहीं तक।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के

0: निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी

0: और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की गाई ये गजल। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार थे पिनाज मसानी, पंकज उधास और अनूप जलोटा। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।

आकाशवाणी का येशु विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत बाबुल फिल्म से येसुदास की आवाज में, गीतकार व संगीतकार रविंद्र जैन।

0: किशोर कुमार और रेखा की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कहानी किस्मत की फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओए कर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

अगला गीत गुलामी फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और शबीर की, रचना गुलजार की है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। जात पर उसकी भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सीने से सो

0: आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं?
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
5: Nexa. श्रोताओं, ब्रेक से पहले जो गीत आपने सुना उसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। कातिलों के कातिल फिल्म का गीत था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में, आइए सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म से। बख्शी के बोल हैं, धुन तैयार की RD बनमन ने।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम तराहने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजन व साजन मिश्रा का गायन। इनके साथ तबले पर नंदन मेहता और हारमोनियम पर अप्पा जोगलेकर ने संगति की है। तो आइए पहले सुनते हैं पंडित राजन व साजन मिश्रा का गाया राग जय जयवंती, जो एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं एरे पिया हम जाने, तथा द्रुत रचना 3 ताल में है, जिसके बोल हैं ऐसो नवल लाडली।

श्रोताओं, ये था राग जय जयवंती और अब आखिर में सुनते हैं इनका गाया राग बसंत, जो तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं फुलवा सब फूल रहे बन में।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है रात गई बात गई इस फिल्म से, जिसे गाया है अनुराग शर्मा व जून बनर्जी ने। गीत व संगीत है अंकुर तिवारी का।

लता मंगेशकर, विपिन सचदेवा व साथियों की आवाजों में ये गीत सुनते हैं श्रोताओं। फिल्म सनम बेवफा से सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है महेश किशोर ने।

मुदस्सर अजीज का लिखा तथा ललित पंडित के धुनु से सजा ये गीत है श्रोताओं फिल्म दूल्हा मिल गया से, जिसे गाया सोनू निगम ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए आशा भोसले व उदित नारायण के युगल स्वरों में अनजान की लिखी रचना, तर्ज बनाई बप्पी लहरी ने, और फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का।

नरेश कामत का गाया, इरफान सिद्दीकी का लिखा तथा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया हुआ, ये सुनते हैं श्रोताओं फिल्म तीन पत्ती का ये गीत।

समीर का लिखा तथा आनंद मिलिंद के धुनों से सजा। आइए सुनते हैं फिल्म बेताज बादशाह का ये गीत। युगल आवाजें हैं उदित नारायण व सारिका कपूर की।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं फिल्म इश्किया का गीत। गुलजार का लिखा ये गीत है, संगीत दिया है विशाल भरद्वाज ने।

श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का। और अब आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अलका याग्निक व साथियों की आवाज़ों में फिल्म अंजाम का ये गीत। गीतकार हैं समीर तथा संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

जावेद अख्तर का लिखा तथा शंकर एहसान लॉय का संगीत बतिया हुआ। लीजिए अब सुनिए फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का गीत। आवाजें हैं शंकर महादेवन व अलीशा मेंडोंसा की।

कुमार सानू व अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत है श्रोताओं फिल्म यार गद्दार से, जिसे लिखा पूजा आहूजा व देव कोहली ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर व SP बालासुब्रमण्यम की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीत है आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम है मेरा पति सिर्फ मेरा है।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1293 कड़ी।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने

0: कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ,

0: बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ, तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटीलैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे,

0: एक पत्र लिखा। प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर।

0: ना होगा।
1: जी
2: चलो संभल कर
0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
1: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। माता की जय। चलो
4: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
0: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन सामजी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: सामजी
4: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
4: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1293 कड़ी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब आपके लिए है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म जम

अनुराधा पौडवाल व मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में आइए अब सुनते हैं फिल्म दूध का कर्ज का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नया सावन का गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर व कुमार सानू ने, इंदिवर के लिए ही रचना तर्ज बनाई बप्पी लहरी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अनुराधा पौडवाल व पंकज उधास की आवाजों में फिल्म दयावान का गीत। अजीज कुरैशी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जावेद अख्तर का लिखा तथा लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुनों से सजाई सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म तेजाब से। आवाजें हैं नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार व साथियों की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के 2रे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों बालकनी छतों दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही।

0: erupted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:11 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम महफिले कव्वाली। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं शंकर शंभू कव्वाल व साथियों की आवाज़ों में जफर इरायुनी का लिखा ये कलाम।

अजीजों अकरबाओं खेशतक बन जाते हैं रहजन, खुदा महफूज रखे खून भी हो जाता है दुश्मन।

तो इत्तफाकन शेर आया हो के बेदम प्यास से, मौत ने घेरा शिकारी के वो निकला पास से। देखकर फौरन चढ़ाई उसने फिर अपनी कमा, तीर चिल्ले में रखा और सर का बांधा। तब निशान था निशाना तीर का या मौत का पैगाम था, तीर फौरन जाके प्यासे शेर के सर में लगा। शेर घबरा करके भागा।

तारीख को बताया खून ने रास्ता हुजूर, यानी खून की बूंदों के जरिए से शिकारी चल दिया, शेर के नजदीक पहुंचा, शेर वहां बेहोश था। अलगरज फिर जिंदगी और मौत में टक्कर हुई, मौत ने पाई फतह।

यार खून दुश्मन बन गया रास्ता बताने के लिए।

हबीब पेंटर कव्वाल के बाद लीजिए अब सुनिए उमर शाद का लिखा ये कलाम। आवाज़ें हैं कैसर आज़ाद बदायूनी व साथियों की।

श्रोताओं, महफिली कव्वाली कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, यदि आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए अपने फरमाइशी संदेश इस नंबर पर 9474234000। चलिए दोस्तों, और अब देर ना करते हुए आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम की और लेते हैं आज का पहला फरमाइशी गीत, जिसे पसंद किया है गांव थनाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे श्रोता ख्वाहिशमंद हैं पलेश टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म वक्त का ये प्यारा सा गीत।

आइए अब सुनते हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की फरमाइश पर फिल्म कटी पतंग का ये गीत।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, सम्मान

सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपके नाम फिर भी पैगाम ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं कमला साहनी पिंग वाला चौक गौरैया जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर व भरत मक्कर की पसंद पर फिल्म तीन देवियां का ये गीत।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म सहरा का गीत। फरमाइश आई है गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियतम, बेबी वामिका और वाणी थांडी, इन्होंने फरमाइश की है पंजाब से।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म कालिया का ये गीत, जिसे सुनना चाहते हैं मजनू का टिल्ला से कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक व माही मलिक।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 50 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च

0: न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 बजें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और

वो दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 29 मई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो। जब याद करें आप अपने दोस्तों को, तो उन नामों में हमारा भी एक नाम शामिल हो। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ स्वीकार कीजिए सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। तो चलिए दोस्तों, वक्त जाया ना करते हुए जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हेलो, कौन कहाँ से बोल रही हैं?

0: जी, मेरा नाम सुनैना है, मैं आटम पार्ट से बोल रही हूँ।
1: जी सुनैना जी, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: जी हम भी अच्छे हैं। क्या कर रही थी इस समय?
0: इस समय रेडियो के प्रोग्राम सुन रही थी।
1: जी आज कौन सा गाना आपने पसंद किया है इस कार्यक्रम में सुनने के लिए?
0: मैं इस वक्त अपनी बहनों को बहुत मिस कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहन है।
1: बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
0: थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: हेलो। मोहम्मद फरमान जी यूपी से बोल रहे हैं
1: जी मैम,
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो?
0: जी हम भी अच्छे हैं। और बताइएगा, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम, फिल्म का नाम है तुमको ना भूल पाए, और गीत के बोल हैं मुबारक ईद मुबारक।
0: जी, ज़रूर सुनवाएंगे ये गीत आपकी पसंद पर। तो कल ईद का भी पावन पर्व है, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके वहाँ पर?
1: मैम बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जी
0: जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं आशियाना बनाता हूँ।
0: हाँ जी, तो यहाँ के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेगुलर

0: बताऊँ आपके कार्यक्रम।
1: जी, और संडे जो प्रसारित किए जाते हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लेते हैं।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सभी प्रोग्राम सुनता हूँ।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून। यासीन अंजान जी झारखंड से बोल रहे हैं
1: जी
0: जी। कैसे
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: यासीन जी आप?
1: बहुत अच्छे हैं, लेकिन काफी गर्मी है, गर्मी से बचा जाए।
0: जी, तो उपाय क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए?
1: धूप में निकलते नहीं है, जब भी सुबह शाम सिर्फ निकलते हैं, धूप से बचते हैं और वो पानी ज्यादा पीते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं,
0: जी, तो
1: और जब
0: गर्मी के
1: जरूरी होता है
0: मौसम।
1: तो छतरी लेके निकलना पड़ता
0: जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और पानी इस मौसम में बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए, है ना, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो बहरहाल बताइएगा, अपनी पसंद का गाना कौन सा है आज?
1: आखिर क्यों, गीत के बोल हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और इस गाना को डेडिकेट कर रहे हैं
0: हाँ जी,
1: दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिश्रा नाल, बेबी चाहत और सारिया।
0: चलिए सब मिलकर सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
1: जी जी काफी

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: जी अमल असम से बोल रहे हैं।
1: जी, मैं अमल असम से, अमल मटारी।
0: जी जी अमल जी, क्या करते हैं आप?
1: जी आज हम तो खेती का काम करते हैं। आज भी इसे घर पे है, आज तो काम होने वाला है थोड़ी देर के बाद में।
0: अच्छा, और मौसम कैसा है
1: असम
0: के वादियों
1: गाय
0: का?
1: के लिए घर बनाना है छोटी से।
0: अच्छा
1: जी, बारिश वगैरह आते रहते हैं ना, जैसे गाय के लिए तो घर बनाना ही पड़ेगा।
0: और
1: कैसे हैं मैडम?
0: जी हम अच्छे हैं अमल जी। और आपकी पसंद का गाना
1: जी
0: जानना चाहेंगे, कौन सा होगा आज?
1: हाँ जी, मेरा पसंद का गाना तो आजकल जो फेसबुक और इंस्टा में बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है रील्स वगैरह में, फिल्म का नाम रहेगा हीरो हिंदुस्तानी का, जो वो दीवाना दीवाना गाना, वो आजकल बहुत वायरल चल रहा है।
0: जी, बहुत ही प्यारा
1: इस
0: गीत
1: गाने
0: है।
1: को ही सुनने मन कर रहा है।
0: अच्छा, जरूर सुनवाएंगे ये गीत। और बताइएगा असम की वादियों के बारे में, कैसा मौसम है वहाँ का?
1: असम में तो आज धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है। थोड़ा तो धूप देते ही तो बहुत गर्मी चलता है, 39 डिग्री सेल्सियस तक चलता रहता है कभी कभी, और आज 31 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है।
0: तो जब गर्मी बहुत
1: और
0: ज्यादा पड़ती है तो क्या करते हैं आप, निजात कैसे पाते हैं उससे, क्या
1: ऐसे
0: उपाय करते
1: गर्मी में
0: हैं?
1: तो

0: हम जैसे गज के अंदर में बैठ के और ठंडा से अच्छे अच्छे से पीता है, ज्यादा से पानी पीता है।
1: और जब
0: और हम
1: खेत
0: लोग तो हर रोज धूप भी हो जैसे बारिश भी हो काम करना ही पड़ता है।
1: जी, और जब खेतों में आप काम करने जाते हैं तो क्या यहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं आप अपने मोबाइल ऐप पे?
0: जी, सुनता है मोबाइल ऐप के बारे में। मोबाइल ऐप में उसको प्रोग्राम को चलता रहता है और ब्लूटूथ बॉक्स कनेक्ट करके यहाँ पे जोर से सुन रहा है, तो दूर से भी सुन सकता है, जो काम करते समय भी अच्छी तरह से सुन सकता है।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके अमल जी। आप सुनवा रहे
0: जी
1: हैं ये गीत आपकी पसंद पर?
0: जी मेरा दोस्तों का नाम ले सकेगा?
1: जरूर जरूर बताइएगा।
0: सबसे पहले मेरा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त है, वो धेमाजी असम का बिमल बसुमतारी है, वो लाइन पर है। बिमल जी हेलो।
1: जी
0: नमस्कार दीदी को, नमस्कार कहिए। नमस्कार
1: जी नमस्कार
0: बहन
1: नमस्कार।
0: जी, हम भी आगे बात किया था,
1: जी
0: आगे
1: किनसे?
0: भी बात किया था, हम भी ले नमस्ते, प्रोग्राम
1: जी, किनसे बात
0: सुनते
1: हो
0: रहता
1: रही है
0: हूँ, बहुत
1: मेरी?
0: अच्छा लगता है। जी
1: जी
0: मैम,
1: मैम
0: वो भी प्रोग्राम सुनते हैं, रोज
1: जी जी
0: सुनता हूँ, प्रोग्राम में रहता हूँ उस दिन।
1: तो कैसे लगते हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
0: जी मैम, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है सुन के, हम लोग आगे भी फिल्म मिला, अच्छा भी लगता है। जैसे सारा उस प्रोग्राम ही सुनते रहता हूँ, जैसे आप लोग का SMS, ये भी रिक्वेस्ट भी सुनते रहता हूँ मैम, सारा
1: हाँ जी,
0: सुन के अच्छा लगता है। हम लोग का सारा दूसरे सुनते हैं।
1: ज्यादातर गीत संगीत के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं।
0: हाँ, ज्यादा गीतों का प्रोग्राम अच्छा लगता है हम लोग।
1: अच्छा, तो बहुत
0: मेरा मेरा दुकान है ना मैम, इधर रह के सारा दिन रेडियो से हम लोग जुड़ा रहता हूँ मैम।
1: हाँ, जी, और आते जाते सभी सुनते रहते हैं आप वहाँ पे ये कार्यक्रम सारे।
0: जी, हम लोग का तो रोज बहुत जी बढ़ते रहता है, उमोल से हम लोग का रेडियो ग्रुप बोर्ड है ना मैम, सारा से बढ़ते रहता हूँ।
1: जी,
0: और
1: तो
0: मैं और एक दोस्त है दिल्ली का, वो धर्मवीर है, वो भी प्रोग्राम को सुनती है अच्छी तरह से। और शिमला से राकेश है, और हमारे थोड़ा डे सुनारी असम से भाईकुन मुंडा है, और गोलाघाट असम से रमेश पात्रो है, और कार्बी आंग सारियाजान असम से है जगेंद्र रूपी है, और हमारे हेलो फॉर्मर एकता ग्रुप का भी कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा। लकेंद्र वर्मा है, केसरी सिंह राजपूत, और सुनील झा, और रमेश प्रजापति, और प्रेम सिंह सोसडिया, और पूर्णिमा, और लक्ष्मी को भी रहेगा डेडिकेट, और सभी हमारे हेलो डियर फ्रेंड सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं इस गाने को डेडिकेट कर रहा हूँ मैम।
1: चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का इतना प्यार इतना स्नेह देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को, और सुनवा रहे हैं
0: जी,
1: ये
0: थैंक
1: गीत आपकी पसंद पर।
0: यू मैम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, रमेश जी बोल रहे हैं पुरी से।
1: पूरी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से मैं रमेश चंद्र चौहान बोलता हूँ।
0: जी, रमेश जी कैसे हैं आप?
1: आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: सभी
0: क्या कर रहे थे इस समय
1: श्रोताओं
0: आप?
1: को मेरा हार्दिक सभी श्रोताओं को प्रोग्राम सुनने वालों को मेरे मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी, और बताइए अपने बारे में।
1: मैडम मैं बहुत पुराने साल 1971 से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: जी,
1: और जब मैं बैंक अधिकारी था और उस समय भी मेरे पास ये छोटा था मिस्टर नेशनल पैनासोनिक अपने पास रखता था
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम मैं सब सुनता था।
0: तो
1: और जैसे एक रेडियो सिलोन के कारण आप अभी अभी आपके भी प्रोग्राम हम सुन रहे हैं।
0: तो
1: बहुत
0: कई
1: ही कार्यक्रम आपके बहुत बहुत ही अच्छा लगता है
0: जी, बहुत
1: और
0: बहुत
1: आपके
0: शुक्रिया।
1: उद्घोषकों की बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत ही आपको हृदय से आभार आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पर। और वैसे बहुत सालों से आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो बताइएगा रेडियो से आपका कैसा जुड़ाव रहा है?
1: यह रेडियो तो 1936 के स्थापना दिवस के बाद आज 90 वर्ष का सफर पूरा गौरवशाली सफर पूरा कर रहा है जी।
0: जी,
1: यह राष्ट्र का सबसे बड़ा नेटवर्क है जी और इनके मनोरंजन के माध्यम से भारत की विविध संस्कृति एकता को जोड़ना जोड़ता है जी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जन जन को जोड़ता है, बड़े ही प्यार से, स्नेह से अपने कार्यक्रम जो है प्रसारित करता है और लोगों से जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता
1: और
0: है।
1: महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके रेडियो द्वारा मिलते थे किसानों
0: जी, और
1: के लिए किसान वाणी, युवाओं के लिए युवा युवा वाणी और श्रोताओं के युवा युवा पसंद के कार्यक्रम भी आपके यहाँ से प्रसारण होता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जी।
0: जी, तो किस तरह के परिवर्तन आपने देखे हैं रेडियो के कार्यक्रमों में? पहले के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रमों के में क्या अंतर पाते हैं?
1: आज पहले के कार्यक्रम हम रेडियो के माध्यम से हम ट्रांजिस्टर के द्वारा सुनते थे परंतु तो आज मोबाइल का ही आज का डिजिटल युग हो गया
0: जी
1: जिसमें
0: जी
1: हम आज मोबाइल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आपसे सभी
0: जी तो
1: सभी श्रोताओं से एक दूसरे की दूरी खत्म हो गई।
0: जी, दूरी खत्म हो गई है।
1: ऐसा
0: और अब
1: लगता है कि हम ऐसा लगता है कि हम और आप एक परिवार के जैसे ही लगता है जी।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपकी पसंद का वो गाना हम जानना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में आपने पसंद किया है, सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म मन की आंखें जो धर्मेंद्र जी और वहीदा रहमान जी को फरमाया फरमाया गया संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और वीर साई रुद्रयान जी ने लिखा। और हमारे कुछ श्रोता है चौटाला से दारा पंडित, मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार झा और नरपत सोनी जी और आकाशवाणी जोधपुर के हमारे पूर्व उद्घोषक हमारे साथ रह चुके हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक महोदय भानुपुरे जी के। हम आकाशवाणी में उनके साथ बहुत ही समय गुजारा और 2016 में मैं रिटायरमेंट बैंक अधिकारी रिटायरमेंट हो गया।
0: चलिए
1: और
0: अब
1: भानु जी हमारे साथ भी यहाँ पास ही रहते रहते हैं
0: तो चलिए
1: और
0: अब
1: उनके भी कार्यक्रम में बहुत उनको भी ये कार्यक्रम उनको गीत अच्छा लगता है।
0: चलिए ऐसे ही हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े रहिएगा। और पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश फिल्म मन की आंखें से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: श्रोताओं, ब्रेक हो चुका है पूरा और हाजिर है हम फिर से एक बार लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
4: हेलो हेलो
3: जी, मेरी बात रमेश जी से हो रही है, आसम से?
4: हाँ
3: जी जी जी। रमेश जी, कैसे हैं आप?
4: हम तो अच्छे हैं
3: जी।
4: आप कैसे हैं?
3: हम भी अच्छे हैं। और बताइएगा, कौन सा गाना आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं?
4: हम मैं आज गिरफ्तार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ। गिरफ्तार।
3: हाँ जी, गिरफ्तार फिल्म का कौन सा गाना है?
4: धूप में निकनाला करो रूप की रानी।
3: जी जी, तो गर्मी का मौसम भी चल रहा है ना?
4: नहीं।
3: तो वैसे जब हम घर से निकलते हैं तो हमें भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए।
4: होती है।
3: जी जी, और आपके वहाँ का मौसम क्या कहता है?
4: इधर मौसम धूप होता है, तुरंत बाद बारिश आ जाता है।
3: अच्छा, धूप
4: कुछ दिनों से चल रहा है,
3: धूप छांव का मौसम बस लगा ही रहा है। अच्छा अच्छा, तो चलिए अब पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश फिल्म गिरफ्तार से।
4: अच्छा, कुछ दोस्तों का नाम दे सकते हैं?
3: जी जी जरूर, जल्दी से याद कर लीजिए अपने दोस्तों को।
4: अमोल बसुमतारी।
3: हाँ जी।
4: विमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, देवाशीष अग्रिका, रमेश प्रजापति, हितेंद्र दास और मेरा धर्म पत्नी रुनु पात्र।
3: चलिए सब मिलकर सुनते हैं, आप ये पसंद करिए गाना।
4: थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: अभी करेगी,
0: हेलो
1: अभी
0: डियर
1: कॉल करेगी।
0: फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो, हेलो,
0: हेलो डियर फ्रेंड्स, सोमी जी सिप्पी घाट से बात कर रही हैं।
1: मैं सिप्पी घाट से बोल रही हूँ।
0: जी जी सोमी जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: जी हम भी अच्छे हैं। और क्या कर रही थी इस समय आप? हेलो,
1: हेलो,
0: क्या कर रही थी इस समय आप?
1: समय बस ऐसे बैठे थे, चाय
0: अच्छा,
1: पी रहे थे। मैं
0: चाय पी रहे थे। तो बताइए, चाय की चुस्कियों के साथ वो कौन सा गाना होगा जो आप सुनना चाहेंगी?
1: जीनियस मूवी का जो गाना है, तेरा फितूर जब से चढ़ गया
0: जी जी
1: ये
0: बहुत ही
1: सुना
0: प्यारा गाना
1: दीजिए। मैं
0: है। जी। वैसे क्या करती हैं सोमी जी आप?
1: टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, कौन?

0: से स्कूल में हो आप?
1: मैं 11 शर्मा स्कूल में पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता होगा।
1: अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं।
0: तो क्या क्या शौक हैं आपके?
1: कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, ये सब शौक है मेरे, और गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो किस तरह के गाने ज़्यादातर सुनती हैं आप?
1: मुझे ज्यादातर जो है ना पुराने गाने पसंद है, पर ये जो तेरा फितूर है ये मूवी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो चलिए सुनते हैं फिर आपकी पसंद का ये गाना।
1: धन्यवाद मैडम।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

हर मौसम की अपनी कहानी होती है, प्रकृति में छुपी एक नई रवानी होती है। हवा चली तो खुशबू साथ लाई, मौसम ने फिर आपकी याद दिलाई। नमस्कार, सुस्वागतम कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपके साथ सोनिया, लेकर आई हूँ ऐसे गीत जो आपके मन में भी मौसम का जादू जगा दे। जी हाँ दोस्तों, मौसम और प्रकृति इंसान के दिल से गहरा रिश्ता रखते हैं, तभी तो बदलते मौसम के साथ भावनाएं भी बदल जाती हैं।

दोस्तों, मौसम अक्सर पुरानी यादों और अधूरे प्यार की कहानी छोड़ जाता है। जब हवा चलती है या बारिश होती है, तो दिल में बीते हुए लम्हे फिर से जाग उठते हैं।

बारिश होगी। दोस्तों, बारिश का मौसम प्यार को और भी ख़ास बना देता है। भीगी हुई हवा और बूंदें दिल को सुकून दे जाती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हम अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला मंजी रोखरे हमांग इंग्री तका इंगम मीडियम वे 438.6 मीटर हेक इंगम 684 किलो हर्ट्स लिखती हांग इन रमांगेलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग

0: Digaknya mauli ata chak nun dai mene hang hitin ke ka ingi program bane e ika mene tin ke ka asa ngam terhayen perita ke tu retak hi telek tan sin nga e hang ngadel nga hang tangamu he kin hure chang rong ta kasat ida fan ke ro tala harap salam yan ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 16वीं कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल की तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके

से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039।

039 हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर.

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 4:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रमों का विवरण।

5 बजे प्रसारित होगा तमिल कार्यक्रम। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें तालाब आधारित बतख पालन विषय पर आप डॉक्टर NC चौधरी की वार्ता प्रसारित की जाएगी। संध्या 6:30 पर आपको सुनवाए जाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे।

प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05, 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों को यात्रा कार्यक्रम तथा जन सूचनाएँ सुनवाई जाएगी। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। इस कार्यक्रम में विषय रहेगा गीतों भरी कहानी। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत सुनवाया जाएगा। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 9:30 पर विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9 बजे News@9 प्रसारित होगा। स्पॉटलाइट्स का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 पर चर्चा सुनवाई जाएगी। रात्रि 10 बजे सरगम कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। श्रोताओं, आप अभी हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे।

अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स का समय रहेगा प्रातः 5:55। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम में सवेरे 6:15 पर शीर्षक होगा सितारे। सवेरे 6:30 पर रामचरित मानस गान की 292 कड़ी सुनाई जाएगी। सवेरे 6:40 पर वतन के गीत आप सुनेंगे सुन पाएंगे। सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं सवेरे 7:00। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वहीं प्राइमरी चैनल पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत ईद उल जुहा पर विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा ईद उल जुहा की अहमियत। वार्ताकारक होंगे अब्दुल सलाम और इसके बाद पर्यावरण कार्यक्रम पर भेंट वार्ता होगी। विषय रहेगा प्रकृति के प्रति संवेदनशील डॉक्टर मंजू नायर से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर आप चंद्र दीक्षित और भूपेंद्र को सुनेंगे।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर दिया है सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और शान ने। संगीत साजिद वाजिद के हैं व गीतकार है जयदीप सहानी।

अब लीजिए सुनिए काबुल एक्सप्रेस फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर और संगीत दिया है राघव सचार ने तथा गीत के बोल लिखे हैं आदित्य धर ने।

अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं टॉम डिक एंड हैरी फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने तथा इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

0: टॉम, डिक एंड हैरी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब पेश है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम पानोली वणकम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। संध्या के 6 बजे हैं। अब पेश है किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में आप तालाब पर आधारित बतख पालन पर बातचीत सुनेंगे डॉक्टर NC चौधरी से।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जब जीवन में परीक्षा की घड़ी लंबी होने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर आपको किसी बड़े दायित्व के लिए तैयार कर रहे हैं। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। नियति हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमारे भीतर के अटूट विश्वास को निखारती है। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, गुलाब के पौधों की छटाई कब की जानी चाहिए, ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुने, गुलाब के पौधों की छटाई कब की जानी चाहिए। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तालाब पर आधारित बतख पालन, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर NC चौधरी जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
4: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। जैसे कि आज की हमारी चर्चा का विषय है तालाब पर आधारित बत्तख पालन, तो बत्तखों का पालन तालाब का इस्तेमाल कर कैसे किया जा सकता है?
5: हाँ, बत्तख पालन तालाब में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जैसे अंदामान में काफ़ी सुनामी का बाद बहुत सारी तालाब हैं, तो हम लोग किसानों को बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसके लिए हम लोग दे रहे हैं कि मछली का साथ जो बत्तख पालन, इससे आपको फ़ायदा है कि बत्तख

0: जो है जो तालाब में वो रहेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ है, जैसे मोलस्क है आपको, बहुत सारी टैडफोल है जो
1: मेंढकों के
0: मेंढक
1: छोटे
0: के छोटे
1: बच्चे
0: छोटे
1: वगैरह।
0: बच्चे
1: हाँ
0: हैं, लार्वा है, इसको खा के पानी को भी सफाई कर देते हैं, साथ साथ उनका भी कुछ पोर्शन जो खाना का भी पूर्ति हो जाते हैं। साथ साथ जो मछली है, मछली के लिए और दाना देने का आवश्यकता नहीं है। जैसे
1: अच्छा
0: कि अंडमान में जो एक ट्रेंड है, फार्मर्स लोग मछली को लिए दाना देते नहीं, उनका अवेयरनेस भी नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको बता रहे हैं, अगर वो बतख पाल ले तालाबों में, दो फायदा होता है। एक तो आपको तालाब को अच्छा से उसका जो इम्प्रूवमेंट होता है, जैसा कि आपको जानते हैं कि मछली जो है दाना भी लेते हैं, साथ ही साथ उसको प्लैंकटन का जरूरत है,
1: अच्छा काई की
0: प्लैंक
1: तरह जो होते
0: हाँ
1: हैं।
0: काई का जो होता है, तो प्लैंकटन बनने के लिए हमको उनका जो पॉन्ड का फर्टिलिटी जो है उसको अच्छा से होना चाहिए। तो इसके लिए
1: अच्छा
0: जो बतख जो है एक मैन्यूरिंग मशीन का हिस्सा में काम कर रहे हैं, जब बतख को हम दिन को उसको पानी में छोड़ देते हैं, तो पानी में पूरा वो स्विमिंग करते हैं, तो उसी समय उसका जो फिकल मटेरियल से पानी में ही गिर जाते हैं,
1: अच्छा
0: उससे जो जो तालाब का जो उर्वरकता शक्ति भी ज़्यादा हो जाता है, तो प्लैंकटन का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन इसके लिए एक बार ध्यान देना है कि हमको कितना संख्या में बतख रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बतख हम रखेंगे तो उससे प्लैंकटन ज़्यादा, उस पर फिकल मटेरियल नीचे होने से प्लैंकटन ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी में फिर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है।
1: अच्छा
0: ये तो एक तरह में आप जो मछली, फिर बतख को जो हम दाना देते हैं, दाना का कुछ पोर्शन पानी में आ जाता है, वो भी मछली ले सकते हैं। साथ ही साथ खास करके अंडमान में है, हम लोग देखा है कि यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश अधिक होते हैं, सूरज का जो रोशनी है बहुत कम होता है, तो पानी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है,
1: जी,
0: जो दिन आपका क्लाउडी जो दिन
1: बादल
0: रहता है,
1: छाए
0: बादल
1: रहते हैं।
0: छाया रहता है, तो उससे बतख बहुत अच्छा काम करता है, जो पानी में जो तैरते हैं तो ऑक्सीजन पानी में मिक्स हो जाता
1: अच्छा
0: है,
1: मतलब पानी हिलता डुलता
0: पानी
1: है।
0: हिलता डुलता है, तो उसमें ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो बतख को जैसे अंडमान में हम लोग जो तालाब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नरेगा बहुत सारी तालाब जो किया है, उसका हिसाब से आप 15 से 20 से अधिक बतख ना पाले, ये हमारा एक सजेशन है। उससे बतख को आजकल जो है एक बतख आपको 300 से 400 रुपया दाम है, उससे काफ़ी अधिक आय हो सकता है। साथ ही साथ मछली से और बतख का जो अंडा है, ये मुर्गी का अंडा से ज़्यादा
1: दाम में बिकता है।
0: दाम में बिकता है, उसका जो पोषक तत्व है ज़्यादा है, क्योंकि मुर्गी का अंडा से बतख का अंडा 10 से 15 ग्राम ज़्यादा होता है,
1: जी
0: तो अंडा जितना बड़ा होता है उसमें उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, खास करके जो प्रोटीन है वो ज़्यादा रहता है। और बतख का अंडा में दूसरी बात है, उनका जो छिलका है, जो एक सेल बोलते हैं हम लोग, उसका बहुत सारी मोटा होता है, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का लिए भी, हमारा जैसे दूर आइलैंड से भी हम बतख को अंडा को बहुत सारी मीन्स इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर
1: जल्दी
0: सकते हैं,
1: टूटता नहीं है।
0: जो जल्दी टूटता नहीं है,
1: अच्छी बात
0: तो
1: है।
0: एक फ़ायदा हमारा बतख पालन। और साथ ही साथ जो मछली है, यहाँ खास करके बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मछली का फ्रेश वाटर फिश का बहुत
1: मीठा
0: सारी
1: पानी का जो
0: बहुत
1: मछली है।
0: डिमांड है।
1: हाँ
0: अभी आप देखेंगे कि हमारा जितना भी मछली फ्रेश वाटर जो फिश मीठा पानी का मछली, वो कोलकाता से आता है,
1: जी
0: मछली है आंध्र प्रदेश से कोलकाता, कोलकाता से हमारा अंडमान में आके बिकता है, तो 250-300 रुपया, तो यहाँ में किसान आराम से इसको एक आय का हिस्सा में, अच्छा जीविका का हिस्सा में बतख कम जो फिश फार्मिंग है इसको आराम से
1: कर
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया बतख अगर तालाब में पाले मछली के साथ, तो दो तीन फायदे आपने सीधे बताए कि दो बतख जो टट्टी करती हैं वो चला जाता है, तो इससे तालाब की
0: उर्वरकता
1: उपजाऊपन जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, मछलियों के लिए जो काई वगैरह ज़्यादा मिलता है, और जब बतख चलते हैं तो पानी हिलने डुलने से ऑक्सीजन भी ज़्यादा
0: ऑक्सीजन भी
1: मिलता
0: ज़्यादा
1: है।
0: होता है।
1: लेकिन आपने किसानों को एक बात चताया कि एक चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा बतख ना छोड़ें। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अक्सर मेरे ख्याल से 10 मीटर चौड़ा या 15 मीटर लंबा, मतलब इसी आकार के,
0: नहीं, 30 मीटर बाय 22 मीटर ये
1: ये है
0: एक
1: यहाँ का
0: हाँ यहाँ
1: साइज,
0: का साइज है।
1: और उसमें 15 से 20
0: हाँ,
1: बतख।
0: जैसे एक हेक्टर में आपको 250 से 300 बतख आप रख सकते हैं,
1: अच्छा
0: तो इससे हम जो दिखा है कि जो एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ का तालाब है किसानों के पास, इसमें 15 से 20 बतख आप आराम से पाल
1: अच्छा
0: सकते
1: तो
0: हैं।
1: ज्यादा होने से भी
0: ज़्यादा
1: मुश्किल
0: होने
1: है।
0: से ज़्यादा से उर्वरकता शक्ति पानी में आ जाएगा, तो पानी में प्लैंकटन अधिक हो जाएगा, तो प्लैंकटन के लिए भी उनका लिए भी ऑक्सीजन जरूरत है,
1: सही
0: क्योंकि वो भी
1: बात।
0: एक उद्भिद है, प्लांट है, तो आज सूरज का रोशनी जब नहीं रहेगा, तो क्योंकि जब सनलाइट रहेगा तो आराम से उसको फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं,

0: उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके उसको आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट
1: जी,
0: करते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं रहेगा तब तो उसको तो रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो
1: बिल्कुल
0: इससे हमारा
1: नुकसान होगा
0: नुकसान होता है।
1: डॉक्टर साहब। लेकिन जब मछलियों को पालते हैं तो जब मछली को बीज छोड़ते हैं तो कुछ दिन बाद ही बतख छोड़ना चाहिए, शुरू
0: हाँ
1: में एक साथ ये भी
0: इसलिए,
1: ध्यान देना
0: हाँ ये
1: चाहिए।
0: बहुत ही अच्छा बात आपने कहा है, 2 से 2.5 इंच जो मछली का जो चारा है फिंगरलिंग्स है वो हम लोग छोड़ना है। अगर आप छोटा भी छोड़ेंगे तो उसके लिए भी कोई परेशानी हमारे पास नहीं है, क्योंकि तालाब में एक कोना में छोटा सा जाएगा, जाली से घेर के भी मैं वहाँ में बतख को हम लोग
1: रख
0: पास
1: सकते
0: रख
1: हैं, रख
0: सकते हैं,
1: सकते
0: तो
1: हैं,
0: उसके लिए मछली के लिए कोई नुकसान होने का
1: नहीं होगा।
0: संभावना नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब देखिए, अगर बतखों की नस्लें अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो यहाँ के लिए आप लोग कौन सी
0: यहाँ का लिए
1: नस्ल
0: एक्चुअली
1: रेकमेंड
0: सबसे
1: करते
0: अच्छा
1: हैं?
0: है जो वर्ल्ड में भी है हमारा और हमारा देश में भी है, खाकी कैम्बेल जो है सबसे अच्छा बतख है, जो साल में 300 तक आपको अंडा देगा, इंडियन रनर बतख है। एक बतख हम लोग ट्राई किया था जो केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम लोग मंगाया था, चारा चमेली, वो भी अच्छा है। यहाँ में हम लोग टेस्ट करके देखा, बतख में भी ब्रॉयलर भी है, तो इसमें पेकिंग जो डक है वो भी यहाँ का लिए बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, तो पेकिंग डक मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने डिगलीपुर वगैरह में
0: दिल्ली वगैरह
1: इसको।
0: में बहुत सारे इस्तेमाल किया, यहाँ में भी हमने बैंगलोर से लेकर आया था, हिसारघाटा से, यहाँ में भी टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको मंगाने का। हम लोग बात किया है जैसा भुवनेश्वर से और बैंगलोर से मंगाने का अभी कोशिश कर रहे
1: अच्छा,
0: हैं।
1: तो आप लोग जो मंगाते हैं इसके क्या मतलब, चूज़े मंगाते हैं या अंडे मंगाते हैं?
0: हाँ, अंडे भी मंगाते हैं, उसको चूजे भी मंगाते हैं, और आजकल जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी जो खाकी कैम्बेल का जो बतख है इनको जो चूजे है इसको डकलिंग्स कहते हैं उसको किसानों को दे रहे हैं, तो किसान भाइयों को अगर ज़रूरत है तो एनिमल हस्बेंड्री से डायरेक्ट उनको संपर्क कर सकते हैं।
1: बत्तख पालन में भी जो आवास है या जो बत्तखों के लिए घर है बहुत ज़रूरी होता है, तो
0: हाँ
1: तालाब
0: ये
1: में जब के साथ पालते हैं तो आवास कैसा होना
0: नहीं,
1: चाहिए?
0: एक्चुअली बतख पालन में आपको आवास का इतना, जैसा मुर्गी पालन में हम लोग कहते हैं, बतख पालन में इतना ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बतख जो है बारिश में, धूप में,
1: रह
0: ठंड में
1: सकते
0: रह
1: हैं।
0: सकते हैं, उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऐसी है। लेकिन तालाब में जब हम बतख पालेंगे तो तालाब में ऐसी हम बतख पालेंगे कि उनका जो घर है वो तालाब में हो जाए। कोई कोई जगह में फ्लोटिंग आपको घर भी बनाते
1: तैरता
0: हैं
1: हुआ जो
0: तैरता हुआ, तो उससे नहीं तो आप एक कोना में आप उसको बतख को
1: तालाब के कोने में घर बनाए
0: कोने
1: और
0: में
1: वो
0: घर
1: जो
0: बनाए उसको
1: तालाब के ऊपर निकला रहे
0: ऊपर
1: वो
0: निकल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है जितना भी उसका जो
1: टट्टी वगैरह
0: टट्टी
1: जैसा
0: वगैरह है
1: था।
0: वो नीचे गिर जाएगी, और बीच बीच में आप 15 दिन 1 महीने में उसको थोड़ा सा आप हिला देना तो पानी में वो
1: चला
0: मिल
1: गया।
0: जाएगा,
1: अच्छा, मतलब पानी
0: तो
1: के लिए
0: हाँ
1: उर्वरक है वो।
0: उर्वरक है।
1: चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर बत्तखों में कोई खास बीमारी वगैरह देखी गई
0: बतख
1: है?
0: में तो इतना खास बीमारी नहीं है, दो तीन बहुत सारी बीमारी है जो यहाँ नहीं है, जैसे वायरस, हेपेटाइटिस है, कलेरा है, डार्क कलेरा बोल रहे हैं, ये जो बीमारी है इससे बतख अधिक मात्रा में मर जाते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ में ये सब है नहीं। जैसे हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ नहीं है तो वैक्सीन भी हमारा यहाँ में डिपो में हम लोग नहीं देते हैं। डार्क कलेरा अगर हो जाएगा तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक कुछ भी दवाई दे के उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। एक दो जगह में हम लोग कॉक्सिडियोसिस बोल के एक पैरासाइट बीमारी जो है ये हम लोग देखा था, उसके लिए बहुत सारी कॉक्सिडियोस्टैट जो दवाई है उसका हम लोग इस्तेमाल करना।
1: अच्छा, वो दाने से जो आती है, वो
0: हाँ
1: खराब दाना खाने से जो आती है।
0: नहीं, खराब दाना खाने से एस्परजिलेसिस होता है, वो जो फंगस से होता है, फफूंद से
1: अच्छा
0: होता है, और
1: अच्छा
0: बतख में एक चीज़ है उसको मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि बासी खाना उसको नहीं देना, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसमें पॉइजन के लिए बहुत सारी, जैसा कुत्ता है बतख है, पॉइजन को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो बासी खाना में अफ्लाटॉक्सिन हो जाता है, तो उससे आपको बतख मर सकती है।
1: अच्छा
0: दूसरी बात है, मैं किसानों को एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि बतख का जो घर है इसको अच्छे से सफाई रखें, बीच बीच में इसको कुछ चूना वगैरह को इस्तेमाल करें, जो फॉर्मेलिन का स्प्रे भी वो लोग कर सकते हैं, और रोज़ उसको बतख को जो घर है उसको अच्छे से धो दे, तो जो पानी है पानी से भी आपको उसका जो फिकल मटेरियल पानी में तालाब में आ जाएगा तो वो भी तालाब का जो उर्वरक के लिए भी अच्छा रहेगा और बतख भी अच्छे से सुस्त रहेंगे।
1: क्योंकि जो बतख का पखाना है उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो गीलापन और
0: हाँ
1: ज़्यादा ही हो जाता है।
0: उतना, और बतख को हम लोग क्या करते हैं कि पानी भी देते हैं, क्योंकि ये पानी का जीव है तो उसको पानी का भी बहुत सारी आवश्यकता है, और पानी उसका घर में भी पानी का थोड़ा सा सफाई पानी का बंदोबस्त रखना भी जरूरी है।
1: अच्छी बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें तो किसान भाई मतलब तालाब में मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन कर काफ़ी लाभ उठा सकते
0: काफी
1: हैं।
0: लाभ उठा सकते हैं।

0: और समय समय पर आप लोग इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह भी मेरे ख्याल से
1: हम लोग
0: देते
1: बहुत
0: हैं।
1: सारी जो प्रशिक्षण किसानों को दे रहे हैं उसका जो हम लोग बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं, हमारा जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है उसका दौरान भी हम किसानों को फ्री में भी बतख का बच्चा दे रहे हैं और उसका देख रेख भी हम लोग खुद कर रहे हैं।
0: अच्छा, ये जो बत्तखों के जो चूज़े घर पे किसान भाई जैसे मुर्गियों के निकालते हैं, इस तरह इसमें भी किया जा सकता
1: हाँ,
0: है?
1: इसमें निकाल सकते हैं लेकिन बतख से नहीं निकालना है, मुर्गी
0: मुर्गी से
1: से अब निकालना है
0: निकालना।
1: क्योंकि बतख अच्छा मादर नहीं है, वो बच्चा निकालने से भी वो उसको केयर नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बैड मदर बोलते हैं बतख को। तो मुर्गी से आप उसको बच्चे को निकालना, लेकिन मुर्गी का अंडा हम लोग जितना देता है 15-16 अंडा देते हैं, बतख का अंडा काफ़ी बड़ा है तो उस वो हिसाब से आपको 10 से 12 अंडा हम लोग मुर्गी का नीचे रख सकते हैं।
0: और वैसे आपने कहा कि जो पशुपालन विभाग से चूजे जब मिल जाते हैं तो किसान
1: हाँ,
0: वहां से
1: तो
0: सीधे ही ले सकते
1: ले
0: हैं कोई?
1: सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी अंडा भी ले सकते हैं, हमारा केवीके में भी हम लोग कभी कभी हमारे पास भी कुछ बतख है, हम लोग अंडा उसको देते हैं
0: अच्छा।
1: तो किसान यहाँ से भी ले सकते हैं।
0: और इसमें जो एक प्रोडक्टिव एज हम कहते हैं ना, जैसे बतख अंडा देना शुरू करती है तो कितने साल तक इनको रखना चाहिए कि उसके बाद उसका जो अंडा देने की क्षमता जो कम होने लगती है उनको निकाल देना चाहिए?
1: हाँ, बतख को एक्चुअली आप 2 से 3 साल तक आप आराम से उससे
0: ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं अंडा, जो अच्छा इकोनॉमिक प्रोडक्शन रहेगा। ऐसे 4-5 साल भी आप रख सकते हैं लेकिन उस पर इकोनॉमिक
0: और उससे पहले चाहे तो
1: नहीं
0: मांस के
1: रहेगा।
0: लिए उसको बेचा जा
1: हाँ,
0: सकता है।
1: मांस का लेकिन क्योंकि काफ़ी डिमांड है और हमारे यहाँ में कुछ किसान जो है, बहुत सारे किसान एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं कि उन लोग 3-4 महीने पालने के बाद अच्छा दाना वगैरह दे दें, वो 350-400 रुपीज़ में बेच के भी काफ़ी
0: फायदा हो रहा है।
1: हाँ फायदा
0: और उसके लिए
1: करते
0: जैसे
1: हैं।
0: आपने जो नस्ल बताई पेकिंग डक जो है वो तो मेरे
1: डक
0: ख्याल से ज़्यादा
1: उसका
0: उत्तम
1: बहुत
0: भी है।
1: अच्छा रहेगा, जो मेल है खास करके, हम लोग जब चूजे एक दिन के चूजे लेते हैं तो उसमें आधा मेल आधा फीमेल हो जाता है, तो मेल को हम लोग आराम से तीन
0: बेच
1: चार
0: सकते
1: महीना
0: हैं।
1: में उसको बेच सकते हैं एज ए ब्रॉयलर के हिसाब से।
0: तो चौधरी जी, आज आपसे तालाबों में बत्तख पालन किसान भाई कैसे कर सकते हैं इस बारे में विस्तार से बातें हुई, आपने बहुत सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।

तालाब पर आधारित बतख पालन, इस विषय में हमें बता रहे थे डॉक्टर एनसी चौधरी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा। साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम का रुख मोड़ते हुए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आपने ये गीत सुना और हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत को आपने ज़रूर सराहा होगा। किसान साथियों, आइए अब हम कुछ जानकारी देंगे जिसका विषय है केचुआ कंपोस्ट। तो चलिए ले लेते हैं ये जानकारी।

0: ಕರಿ. किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करें केचुआ कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। केचुआ की खाद बनाने के लिए किसी अच्छे पेड़ की छाया में, जहां पर पानी निकास की सुविधा हो, ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए। केचुआ खाद आप दो तरह से बना सकते हैं, पहले ढेर बनाकर और दूसरा गड्ढे में। इसके लिए सबसे पहले आपको आधा किलोग्राम से एक किलोग्राम तक केचुआ खरीदकर किसी जगह में जहां पर धूप और बारिश से बचाया जा सके, टैंक बनाकर आधी सड़ी हुई गोबर की खाद और कुछ मिट्टी डालकर केचुओं को टैंक में छोड़ देना चाहिए। गोबर की खाद डालने से पहले टैंक में यदि पुराना बोरा उपलब्ध हो तो नीचे बिछा दें, जिसके बाद गोबर की खाद डाल दें। ये हमेशा ध्यान रखें कि टैंक में 45-50% नमी बनी रहे। इस तरह बीच में तापक्रम भी नाप लेना चाहिए, जो कि 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तापक्रम होने पर केचुए मरने लगते हैं। इस तरह 2-3 महीने के अंदर 2-3 किलोग्राम वजन तक का केचुआ आप तैयार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में। जिस फसल अवशेष से कूड़ा करकट या कचरे से केचुआ खाद तैयार करना हो, उसमें से सबसे पहले कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े आदि को अलग कर लें। इसके बाद जिस कचरे से या फसल अवशेष से खाद बनानी हो, उसे पहले अलग टैंक या गड्ढे में 1:1 अनुपात में 1 भाग फसल अवशेष और 1 भाग गोबर ढेर बनाकर 30-45 दिन तक रख लें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ताज़ा गोबर और फसल अवशेष को मिलने से ढेर का तापक्रम एकाएक बढ़ जाता है, जो कि करीब करीब 40-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ऐसी अवस्था में यदि हम ढेर में केचुआ मिला दें तो केचुओं के मरने का डर रहता है। जब तापक्रम धीरे धीरे गिरकर 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तो गड्ढे में केचुआ 1.5 किलोग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से डालना चाहिए, या फिर इसके लिए भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करके इस पर आसानी से सड़ने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके 2 इंच मोटी सतह बना देनी चाहिए। इसके ऊपर 2-3 इंच सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर 1.5 किलोग्राम केचुआ प्रति क्विंटल गोबर और फसल अवशेष के मात्रा के हिसाब से डालकर ढक देना चाहिए। 15-20 दिन के अंतराल पर नमी को परख लेना चाहिए। नमी कम होने पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद मोटी टाट की पट्टी से इस ढेर को ढक दें। झाड़ी से टाट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें, ताकि 45-50% नमी बनी रहे। इसे अधिक नमी या गीलापन रहने से हवा अवरुद्ध हो सकती है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु तथा केचुए ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे और केचुए मर भी सकते हैं। नर्सरी बेड का तापमान 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सप्ताह में 1 बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। इस पद्धति से 90-100 दिन में अच्छी गुणवत्ता वाली केचुए की खाद तैयार हो जाती है। यह देखने में चाय के पाउडर जैसा दिखता है और इससे मिट्टी के समान सौंधी खुशबू आती है। खाद निकालने के 8 दिन पूर्व से सिंचाई बंद कर दें तथा खाद के छोटे छोटे ढेर बना लें, जिससे केचुए खाद की निचली सतह में चले जाएंगे और खाद को हम हाथ से अलग कर सकते हैं। नर्सरी को तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए घास फूस का शेड बनाकर खाद बनाना अति उत्तम रहेगा।
1: केचुआ कंपोस्ट, इस संदर्भ में अभी आपने ये छोटी सी जानकारी हासिल की।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम के आरंभ में

हमने आपसे पूछा था, गुलाब के पौधों की छटाई कब की जानी चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुलाब के पौधों की छटाई जून और नवंबर के महीने में की जानी चाहिए। जून में छटाई करने से अगस्त से अक्टूबर में फूल आते हैं और नवंबर में छटाई करने से जनवरी फरवरी के दौरान फूल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। किसान साथियों, अगर हम घड़ी की ओर देखें तो समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रही है, इसलिए हमें लेना होगा आपसे विदा। लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। दर्द, यादें और एहसास से भरे गीतों को कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काबिल फिल्म के एक गीत से। इसे अपनी आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल और पलक मुचाल ने। इस गीत को संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने तथा इस गीत के बोल लिखे हैं नासिर फाराज ने।

अब कार्यक्रम में सुनिए घुंघरू की आवाज़ फिल्म का एक दर्द भरा गीत। इसे स्वर दिया है आशा भोसले ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

अब लीजिए सुनिए कोरा आंचल फिल्म का एक गीत। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने तथा संगीत से सजाया है रोशन लाल खत्री ने।

अब पेश है हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलिडे, इस फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर दी है अरिजीत सिंह ने व संगीतकार है प्रीतम।

अब लीजिए सुनिए अर्थ फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है जगजीत सिंह ने तथा इसके बोल कौफी आजामी ने लिखे हैं।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं स्त्री डांसर 3D फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर दिया है अरिजीत सिंह और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। हम आपको याद दिला दें, अब शाम 7:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। इस कार्यक्रम में विषय रहेगा गीतों भरी कहानी।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत ईद उल जुहा पर विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा ईद उल जुहा की अहमियत। वार्ताकार होंगे अब्दुल सलाम और इसके बाद पर्यावरण कार्यक्रम पर भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसका विषय रहेगा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, डॉक्टर मंजू नायर से।

7:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। इस कार्यक्रम का विषय रहेगा गीतों भरी कहानी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी बताया। स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार कोलकाता में होगा। सरकारी आरा मिल से पड़ाक लकड़ी के लिए ऑनलाइन मांग पत्र की नई व्यवस्था 1 जून से लागू होगी और विश्व रक्तदाता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रक्तदान शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने का आह्वान किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिए और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों से संपर्क में रहे और उनका हालचाल पूछते रहे। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के बाद समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री प्रताप सिंह यादव ने ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने और वर्ष 2026 के लिए जन भागीदारी बढ़ाने हेतु योग संगम पोर्टल का पुनः शुभारंभ किया और राज्यों तथा संस्थानों में योग के लिए समर्पित स्थान विकसित करने हेतु योग पार्क पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने योग स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश वाली एक नई डिजाइन की योग टी शर्ट का भी अनावरण किया। श्री जाधव ने बताया कि योग 365 अभियान के अंतर्गत 100 दिन

के निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और योग मित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, आरा मिल और रक्तदाता दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकारी आरा मिल से चीरी हुई लकड़ी और गोल लट्ठों के प्रबंधन के लिए नए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधान 1 जून से लागू किए जाएंगे। इसमें पड़ाक लकड़ी के लिए विशेष प्रावधान है, जिसके तहत पड़ाक लकड़ी के लिए ऑनलाइन आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख तक ही स्वीकार किए जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 60 मांग पत्र प्रति माह पंजीकृत किए जा सकेंगे, जबकि प्रति आवेदक के लिए अधिकतम 0.5 घन मीटर लकड़ी की अनुमति होगी। सभी लंबित मांग पत्र 1 जून से रद्द माने जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति ई स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मांग पत्र दर्ज कर सकते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर 14 जून को देश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संस्थाओं से इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। इनमें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, जागरूकता अभियान और जनसंपर्क गतिविधियां शामिल होंगी। हर वर्ष 14 जून को मनाए जाने वाला विश्व रक्तदाता दिवस स्वैच्छिक रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 2026 का मुख्य विषय मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए है। अभियान का उद्देश्य नियमित स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्त एवं प्लाज्मा दान की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना, रक्तदाताओं के योगदान को सम्मान देना तथा सभी के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों को सशक्त बनाना है। ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान द्वारा कल नमूनागर में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 25 किसानों और कृषि कार्य से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा की। इस अवसर पर विशेषज्ञ मोहित, डॉक्टर पूजा कपूर और डॉक्टर जकारिया जॉर्ज ने अपने विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। प्रश्नोत्तर सत्र में वैज्ञानिकों ने किसानों की समस्याओं का निदान करने के साथ साथ आवश्यक सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने पर बल दिया गया। भुवनेश्वर स्थित कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित किट अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में द्वीप समूह के युवा शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 मई तक किया गया, जिसमें देश भर से 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में JS विराट ने 9 राउंड में 6 अंक हासिल कर अंडर 13 वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें नगद राशि से सम्मानित किया गया। वहीं रुशिल वाई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बीच द्वीप समूह की ओर से महिला वर्ग में R कस्तूरी बाई कैटेगरी A ग्रैंड मास्टर्स वर्ग में

हिस्सा ले रही है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी बताया। स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार कोलकाता में होगा। सरकारी आरा मिल से पड़ौक लकड़ी के लिए ऑनलाइन मांग पत्र की नई व्यवस्था 1 जून से लागू होगी और विश्व रक्तदाता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रक्तदान शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं।

पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। कार निकोबार में 4 मिलीमीटर, हटबे में 8 मिलीमीटर और लॉन्ग आइलैंड में 1 मिलीमीटर। जन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाए। कल तक के मौसम पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम का हाल।

जहाजरानी सीवर निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कैमलबे आगामी 2 जून 2026 मंगलवार को कोलकाता से श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। यह जलयान शाम 4 बजे कोलकाता से प्रस्थान करेगा तथा 6 जून 2026 शनिवार को श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। सामान्य यात्रियों के लिए टिकट की बिक्री 26 मई 2026 से प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। यात्री डीएसएस ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार टिकटिंग काउंटर से भी टिकट प्राप्त किया जा सकता है।

एमवी बारटान कल सुबह 6 बजे शिवजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। यह जलयान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा। इस जहाज की वापसी यात्रा उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए शिवजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर शिवजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन प्रातः 8:30 पर शहीद द्वीप से प्रारंभ होगी तथा यह जलयान शिवजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6:15 पर शिवजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगी। यह जलयान प्रातः 8:45 पर स्वराज द्वीप से प्रारंभ करेगा और शिवजयपुरम पहुंचेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन के 11 बजे शिवजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा कल ही दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से छूटकर स्वराज द्वीप के लिए शिवजयपुरम से होगी। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिन के 11:30 पर शिवजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से प्रारंभ होगी तथा यह जलयान शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम

वापस आएगा। जलियान हट भी कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा कल ही 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जलयान अगले दिन यानी 29 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से वापसी यात्रा प्रारंभ करेगा तथा शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर भेजा जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय 7:20 हुए हैं। अब पेश है फिल्म गीतों पर विशेष कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं फिल्म पत्थर के फूल फिल्म का एक गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने। इस गीत को बोल लिखे हैं रविंद्र रवाल व संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का नाम है।

दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, आज की कहानी है अर्जुन नामक एक युवा गायक की, जिसका शीर्षक है सफलता का सच्चा स्वर। दोस्तों, अर्जुन एक युवा गायक था जिसका सपना था बड़े स्टेज पर अपनी आवाज से लोगों के दिल को छूने का। पर एक ऑडिशन में उसे सिर्फ इसलिए नकार दिया गया क्योंकि उसके पास फैशनेबल आवाज नहीं थी। निराश अर्जुन ने सोचा, क्या सफलता के लिए दूसरों की नकल करना ही एकमात्र रास्ता है? परंतु दोस्तों, अर्जुन ने हार नहीं मानी क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि जिंदगी में असफलता केवल एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं।

दोस्तों, अपने छोटे से कमरे में बैठा अर्जुन रोज शाम अपनी दादी से गांव की कहानियां सुना करता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, नदी कभी पहाड़ से नहीं लड़ती, बस अपना रास्ता खुद बना लेती है। फिर क्या था, यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने देखा कि पास के पार्क में बच्चे गंदगी से परेशान थे। अचानक उसे एक विचार आया। अर्जुन ने स्थानीय बच्चों को इकट्ठा किया और पार्क साफ करने का अभियान शुरू किया। दोस्तों, शुरू में लोग हंसे, पर जब उसने सफाई के साथ साथ बच्चों को रिसाइकलिंग से सजावटी सामान बनाना सिखाया, तो कई युवा उसके इस अभियान से

दोस्तों, एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव में मशहूर संगीत निर्देशक आए। अर्जुन ने सोचा यही सही मौका है, पर उसने गाने के बजाय अपने साथियों के साथ पार्क की कहानी सुनाई और रिसाइकल्ड सामान से बना संगीत वाद्य बजाया। भीड़ ने सिर्फ

दोस्तों, अर्जुन ने सिखाया कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना है। जब आप सच्चे दिल से समाज के लिए कुछ करते हैं, तो आपकी आवाज अपने आप अनोखी हो जाती है। याद रखिए, जैसा बोगे वैसा काटोगे का सिद्धांत सिर्फ खेतों में नहीं, जिंदगी में भी काम करता है।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनना पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच। कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
4: सफलता का सच्चा स्वर। दोस्तों, अभी आप यह कहानी सुन रहे थे।
0: दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनना पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार

0: बार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जब जब फूल खिलते फिल्म के एक गीत के साथ। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और नंदा ने। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम फिर लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद.
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: कार्यक्रम में फिर स्वागत है. अब हम आपको सुनवाएंगे ज्वेल थिफ फिल्म का एक गीत. इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने.

श्रोताओं, हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं जोशीला फिल्म का एक गीत। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने और इस गीत के बोल है किसका किसका रास्ता।

अब पेश है ज्वेल थिफ फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

जब जब फूल खिलते हैं, इस फिल्म से अभी हम आपको एक गीत सुनवाएंगे जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने, बोल आनंद बख्शी के हैं।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जोशीला फिल्म का एक गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, बोल सुधीर लुधियानवी के हैं।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब पेश है रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पद हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्ण संशोधन वेतन बैंड 3 के तहत 2 पर

के में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पद हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्ण संशोधन वेतन बैंड 3 के तहत दो पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्ण संशोधन वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकते। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर भेज सकते हैं। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने, केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड है 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं, साथ ही डाक द्वारा भी भेजा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। रोजगार समाचार अब यहीं समाप्त होता है।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष

0: 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के

0: जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद

0: और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू 81.35 करोड़ पर्संस कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर दैट फूड ग्रेन्स रीच एवरी नीडी पर्सन इन द कंट्री ऑन टाइम थ्रू PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today, while several cities including Jaisalmer, Bikaner and Churu witnessed temperatures above 46 degrees Celsius. Night temperatures also remained high in many parts of the state. We have a report.
4: Rising day and night temperatures have affected normal life. During the daytime, movement of people on roads and in markets has become limited. In various districts, the administration is making arrangements at multiple levels to deal with the heat. Meanwhile, Chief Minister Bhajan Lal Sharma has urged the people of the state to prioritize their health and the safety of their families in view of the rising temperatures and heat wave conditions. He has appealed to the people to follow the

0: the efficiency of addressing those issues will be faster and smarter.
1: Right. In fact, you're on point absolutely to talk about grievance redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15 to 50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रूपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन इमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन इमिशन विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे।
1: सो लक्ष्मी, इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम एंड यस ऑफ कोर्स एक्विटी एंड इंक्लूसिविटी आर द की पिलर्स ऑन व्हिच दिस इज बेस्ड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, बट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी हाउ डू यू सी दैट वी कैन मेक दिस मोर सस्टेनेबल, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली अ ब्रिज reform that was brought in, but it is still continuing. So do you see sustainability as something that we really need to consider long term?
0: Scheme has been implemented for so many years. Food Security Act was 2013. It's a act, illegal entitlement to subsidized food grains was given to 2/3 of India's population. From then, you know, from 1 rupee to 2 rupee to now, you know, per kg to free distribution of grains, we have traveled a long journey. In that journey, there have been many reforms from time to time that has been taken so that to address the leakages, so that to address the eligible beneficiaries, get the food grains. These have been the key elements of this whole idea of welfare scheme. So to that extent, we've sustained for so long, and the adoption of technology will further enhance the sustainability and ensure the right person gets the food. And the government also saves the money. It's all taxpayers' money, which goes as subsidy. So that is also saved with the use of technology, reducing the transportation costs and ensuring there is a more of local procurement than moving from one state to another state. All these are towards sustainable implementation of this mega scheme.
1: Right. And do you see any challenges? Because it's huge. Do you see any challenges and what can we do about it?
0: Yes, we are so eagerly adopting the new technologies coming up so fast, and we are adopting it in every scheme. Caution should always be there to what extent this technology can be used and misused. So that particular part, the technology government takes care of it, then it will be easy for implementing and taking benefit of the technology.
1: Lakshmi, this is the tech age, and we should talk about the role of technology in actually, this is a continuation of schemes which have been lauded, in fact, as great food safety measures which India has taken across the world. Mr. Vaishnav has spoken about this also.
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के. सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री. करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी. दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है. तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे. हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट किया जाए.
1: सो इट इज अ कंटिन्यूएशन. हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू बी यूज? डू यू फील दैट समवेयर नाउ व्हेन वी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द सेम स्कीम्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ मोर एंड मोर मेजर रोल?
0: डेफिनेटली, यू नो, द टू स्कीम्स वर नो फंक्शनिंग सेपरेटली, एंड द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अंडर वन अम्ब्रेला इज टू रिमूव दैट फ्रेगमेंटेशन एंड सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू ब्रिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन. So when we look back, there were a lot of things which were done manual, and that age is gone. Now every day new technology is coming and integrating in the systems, and to improve transparency, efficiency is need of the hour. So to that direction, this is basically continuation with bringing some new changes in the technology and technology adoption that will improve the efficiency. So

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर

0: 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं

0: यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है कि इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान

0: बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे। फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी। पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से

0: ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है? ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े

0: इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करकर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहां तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में हैं, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया
0: केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स की ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सरगम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मी गीत सुनाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म के एक गीत के साथ। इसे स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु बच्चों के असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है आपकी यादें एल्बम के इस गीत के साथ। इसे स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और देवाशीष दासगुप्त ने। गीत के बोल समीर के हैं।

अभी आप कुर्बान फिल्म का एक गीत सुन रहे थे। इसे गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया था आनंद मिलन ने तथा गीत के बोल लिखे थे समीर ने। अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना, 20 साल बाद फिल्म के एक गीत से सुनिए जिसे स्वर दिया है मोहम्मद अजीज और सरिका कपूर ने। गीत के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

20 साल फिल्म के साथ ही अब फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम का हाल। श्रोताओं, अभी आप हमारे मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। जनसेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाए। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना थी। ये है मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30:25 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम

अपनी सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि अर्थात 28 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:26 और 40 सेकेंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।